0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बनाना राई भी नहीं, रोई

Thank you.

Thank you.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Fresh.

जैसे शरीर शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे ये

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yes.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा तो देखते हैं, जो भी अपन ने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पण साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो प्रभु के को न खाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये क्या है, प्रभु के को नहीं तो गाते हैं। और दाल रोटी तो बाप दादा बंदा हुआ है देने के। इस प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वो कभी कभी खिला देगा। तो बहुत अच्छा, चाहे ट्रस्टी बन के भी सेवा कर रही है। अगर ट्रस्टी है, सच्चे ट्रस्टी, मतलब के ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी है, तो बाप दादा कभी भूखा नहीं रख सकता। दाल रोटी जरूर खिलाए, क्योंकि बाप दादा भूखा रहता है क्या? रहता है। जब बाप दादा भूखा नहीं रहता, सभी भोग लगाते हैं। आप सभी भोग लगाते हैं ना, चतुराई तो नहीं करते, एक मिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ नहीं। अगर ट्रस्टी है तो भी बाप दादा बंदा हुआ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अनुभव करें कि ये क्या बन गई है। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय नाजुक आएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चाहना बढ़ेगी, कुछ मिले कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को

सदा ऐसे एवरेडी रहना चाहिए, जो कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जावे। चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ ना कुछ लेके जाए। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देख के बहुत खुश होते, दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स वाह। सेवा तो करते ही है, और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार तो आप ही देखते, जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ, अगर नहीं हुआ काटने अकाटने तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो। क्योंकि टीचर्स बनाने में दादा के बच्चे दादा, तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक वाणी, दूसरा स्वर, शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूप।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अचानक

0: एक सवाल देते हैं, हर बच्चा दृढ़ संकल्प धारी विशेष आत्मा बनो, संकल्प किया इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। कहते हैं दृढ़ संकल्प किया लेकिन दृढ़ता माना ही सफलता। अगर सफलता नहीं है तो दृढ़ता नहीं कहेंगे। तो अभी दृढ़ता स्मृति में लाना और उस विधि पूर्वक आगे बढ़ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे ये कॉल ऑफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में थोड़ा थोड़ा अनुभव ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसके पीट करके कुछ न कुछ अनुभव करे, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। और अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे। जितना हो सके योग्य आत्माएं देख करके अनुभवी मूर्त बनाओ, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा आते रहो। आप कहेंगे नहीं आओ तो भी आएंगे। अनुभव ऐसी चीज स्वयं को भी अनुभव में बढ़ाओ। जितना जितना अनुभव में और महादानी बन के सेवा में बिजी रहेंगे ना, तो ये जो टाइम वेस्ट होता है ना समस्याओं में, दादियों को भी समय देना पड़ता है और अपने को भी समय देना पड़ता है, वो समय बच जाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब बाप के बने है तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा I'm not

भी आप खा नहीं तो मेरा मेरा कहां से है? तेरा है या मेरा है? बाप का है, पक्का है कि कहना है करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला फायदा याद करो, करना बॉडी कॉन्शियस की मैं

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर बापू समझ के कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सक। अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ऐसा नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी पाप माना दिल से तो वर्षे के अधिकारी बन सकते।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वैसे अभी शिवा से लगन है, ये बाप दादा ने देखा है कि शिवा से लगन अच्छी है। शिवा के लिए एवरेटी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए वरिटी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा Yeah। वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकते। ये रिसर्च करो, सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाए तब समापति के समय को समापत कर अपना राज।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Chico.

एक बच्चा। Free.

red sun.

बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे समझ जाएगा।

¿Para qué, tío?

cena. Chup. Esa te caí.

खुश करने के

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: टीचर को क्या चाहिए? सेंट्रल अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंट्रल थोड़ा रहने लायक तो अच्छा। और जो साथी है वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, पापा की प्रणाली अच्छी हो, अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल रखती है थोड़ी। फिर समझती है
2: हमारी पहचान नहीं है दादी।
1: चाहिए या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके बोल में कैचिंग पावर में विशेषता है, तो जिसके कैचिंग पावर और वाणी में किसमें मिटाज होता है और किसमें स्पष्टता होती है, बोलेंगे एक बात आप भी बोलेंगे ये भी बोलेंगे, लेकिन योग की बात जोड़ो सिर्फ बोल में भी किसमें मिटाज होता है, किसमें स्पष्टता होती है, किसमें कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ की मिसाल वगैरह कैच करके सुनाती है, तो इसीलिए उनका नाम भी हो जाता है, कौन चाहिए फलानी चाहिए, कोना भी फलानी है, चाहे योग में भले कच्ची भी हो, लेकिन इस पर नंबर फाइनल नहीं होने, जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं दियोंगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट बनाए, सेंटर बनाए, योग्य कितनों को बनाए, सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन आत्माओं को योग्य कितनों को बनाए, नाम हो गया दी सेंटर की इंचार्ज और 30 में से 15 हिल रही है, 15 ठीक है, तो क्या हुआ, फायदा क्या, सिर्फ यह नाम हुआ, सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र, लेकिन नंबर इसे नहीं मिले, फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे उसी प्रमाण मिलेंगे, इसीलिए ये भी चाहिए चाहिए कदम कर, नहीं तो योग नहीं लगेगा, रोज ही देखते रहेंगे कि फलानी जगह हुआ मेरे को फिर भी नहीं मिला, अभी देखो परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेंगी, तो मुख्य बात है निश्चय को जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो, कहने में तो आप सर्वशक्तिवान हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में टाइम पर आना चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पाप का वायदा भी है जो सच्चे दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीन बातें याद रखो, सच्चे दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीनों बातें अगर कोई भी समय दुनिया के हालतों में भी, दुनिया की हालत कैसी भी हो, लेकिन तीनों ही बातें हैं तो आप सबको दाल रोटी बाप दिलाएगा। दो चार सब्जी नहीं दिलाएगा, दाल रोटी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। उसको बोरन वीटा बना के बाप दादा

叫什么样子给他呢？爱为了没也不能为他不看没फिर मोर बाहर के बताने बजाओ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Stop.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा के पास बच्चों के पत्र वाचित किया, बहुत अच्छी अच्छी हिम्मत किया क्या हम अब से 108 के माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रोल ध्यान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं बाप ने आप सबके
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्रह्मा बाप को देगा कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी
0: रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी बच्चों को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। सब

四大爸爸，爸四大爸爸那呆了，他都压根儿。

इसमें अटेंशन देना है, इसके हाथ उठाओ। सुबह को उठते ही ये बाबा शब्द याद कर, पाप देखे

वहां शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं,

娃娃都给我个故事，故事比巴多的爱而给阿布丘斯和巴克雷的故事巴德What's up?

0: az vállásabb tiédrak. Agar kabe mood up hoda, vállásabb.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इस

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे ओले ना देते हैं कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो समय पर नहीं आती। लेकिन इसका कारण क्या? सर्वशक्ति शक्ति नहीं आती है उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेठ नहीं होते। इसीलिए बिना सीट के ऑर्डर कोई नहीं मानता, तो सदा अपने सीट पर सेठ रहो। बेस्ट थॉट्स चलते हैं वह कभी टेंशन आता है तो सही स्वमान की सीट छूट जाती। बाप दादा ने स्वमान दिए कितने बड़ी स्वमान।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वो तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो चल।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी किसमें होशियार बनेंगे? मनसा शिवम, नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, सब कर सकते। बच्चों ने खेल खेला था ना, दौड़ लगा देखा खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगा। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा करने।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल, आप मर्सीफुल देव देविया और देवताएं हो ना हो, संसार नहीं बदल सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Despiértete. Oh,

Because.

इस कभी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही शरण दे रहे हैं कि समय के समीप विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अपमान में आते हैं तो ये भी व्यर्थ संकल्प

0: सपने ही हो, मैं भी सब जानता हूं। ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचे ये मेरे पर अपमान का संकल्प, ये भी सुख्यम अपवित्रता का अंश। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गए, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया के स्थापना का समय समीप लाने वाले परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो, तो जो निमित्त आत्माएं हैं उनका वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Bolsa Sem.

विशेष अटेंशन रखो, क्यों?

Jesse Nickley. Jesse. Full on, you worship.

सृष्टि मीठा संबंध संपर्क रख

0: साधन है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वर्तमान समय

Geçti etti. Abi. Same. Same pone que nadese. Pap dada. सभी बच्चों के अंदर से संकल्प से बोल से

0: far bruciare a sé. Alla bella bruciare di panate.
1: Never.

सिर्फ बोलने तक नहीं लेकिन संकल्प तक। ये कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करने चाहिए। आत्माओं के कारणों को भी निवारण

अभी मुक्ति चाहते तो शांति से सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते। और मुक्ति दाता कौन? बाप के साथ आप बच्चे भी

चर्चे तरों से आज तक क्या मांग

Tocante. Porte. Dic. Sabim. Okay. Chill out.

shut

इस कारण शब्द

आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्त स्वमान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन लिस्ट लाओ, इसी नशे में रहो। Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा के पास पुकार और दुख की आए बहुत सुनाई देती, आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले, तो वर्षा लेने वाले को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? वैराग, बेद का वैराग और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों क्या के क्यों मैं टाइम नहीं देना। अबे हे बाप दादा के सिक्की लदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले हो, लाइफ सदा काल होती, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु दयालु दुखहर्ता सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो, दुखियों के दुख के आवाज तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक विश्व को दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अपने भाई बहनों के ऊपर रैप दिल बनो और रैप दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव सुदैव किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको रहम है उस आत्मा के प्रति तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं है। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता अंदर लगा हुआ किसी आत्मा के प्रति और समझते हैं रहम पर तो वो हुआ मतलब का रहम। सच्चा रहम नहीं, सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देहभान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाओ पार्टी से होता है और कोई का लगाव गुरों से भी होते हैं, विशिष्टता से भी होते हैं। लेकिन विशिष्टता वा कौन देने वाला को आत्मा तो फिर भी कितने भी बड़ी हो लेकिन लेवता है बाप से। बाप से लिया है, अपना नहीं है, बाप ने दिया है तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो।

Сили Кахала. Ке Сварат Кахала. Ремне. Каймбачеси. Нас накре тегаде. Онга Сварат. मुझे रैम पड़ते और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रैम। लेकिन जे करूं स्वागत रैम है लगाओ मुक्त Vale.

0: समझा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो भी निमित्त बने हुए हैं उनों को आजकल के वायुमंडल पर स्वयं तो संतुष्ट रह नहीं है, लेकिन संतुष्ट करना भी असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं। क्योंकि आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं। कुछ सिक्किया, कुछ किमिया, कुछ रैम, कुछ आत्मक सने उसकी आवश्यकता है। वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता, बैलेंस से सिक्किया भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दो। सिर्फ सिक्किया से अभी सभी सिक्किया बन गए हैं, इसलिए सिक्किया के साथ हिम्मत और सने दिल का बाहर का नहीं, लेकिन दिल का सने दोनों का बैलेंस रख करके दिन और ऐसे प्लान बनाओ और कोई ना कोई ऐसा प्लान चलता रहे, जैसे समय पर समय पट्टियां चलाते हैं ना, वो तो चलाते ही हूँ, लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम ऐसे विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बन। चाहे ना है उसमें मिलके और मांस के लिए ऐसा फर्क निकालो जो सभी बिजी हो जाए उसमें, रिजल्ट आती रहे। और चीकिंग भी हो, अगर नहीं करते है तो क्यों? उनके ऊपर सने से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समय पारा तो ऐसा कोई कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल के सबको बिजी रखो उसमें। ठीक है।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

को लास्ट बच्चे से भी प्यार

0: Jacobing, Pop Dada, Shejete, Xadjel, Red Ranger, Piche Piche, Nairage.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी समय परमान सबको बेहद के वैराग वृद्धि में जाना ही होगा। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय शिक्षक बनाना। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाए, बेहद की वैराग आद से अंत तक रहा। आद में देखा का बना। नसीह मेरा समझ कर पर्सनल अपने वृद्ध एक रुपए की चीज यूज की कि कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है मेरा पन नहीं। समय श्वास अपने वृत्त नहीं उसे भी बेहद किए फेरा की रहे इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया सदा साधारण लाइफ में रहे कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में लगाई वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे चेंज किया बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज किया कहने से भी सुनते हुए उपराम रहे सदा बच्चों को सने देखते हुए भी ये शब्द रहे सब बच्चों के लिए इसको कहा जाता है बेहद की वैराग वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही अंत में देखो बच्चे सामने है की फैराग फिरती सामने होते हुए बच्चे और सनई बच्चे अन्य अन्य बच्चे बेहद का वैराग रहा। सेकंड में उपराम फिरती का बेहद के वैराग का सबूत देगा। एक ही लगन सेवा सेवा और सेवा और सभी बातों से उपराम
0: शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Sorry.

Esa X zanca la boca.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी को अपना निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे, पक्का है ना? साथ रहेंगे ना, बाप को अकेला नहीं छोड़ के चले जाना, अकेला तो रे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं, इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो, बाबा मेरा बाबा, बाबा हसर आपकी समस्या को हल कर देंगे, दिल से बोलना, बाबा ये बात है, बाबा ये करो, बाबा ये, बाप बंदा हुआ है, लेकिन दिल से ऐसे नहीं, मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा मधुबन निवासी,

Yo sé que te napiaré, Samko. Mato vanne vasi. Ki sevako. Dek. Sapat kushote. Log vi kehte hain. Ki ye kaun chalata hai. डायरेक्शन दे रहा है ये पता ही नहीं पड़ता, जैसे मशीन चल रही है। तो मधुबन निवासियों की ये सेवा का भाग्य बहुत बड़ा है। जो भी ग्रुप आता है उसके आगे एग्जाम्पल तो मधुबन निवासी होते, चाहे भाषण नहीं करो, सेंटर पर बैठ के मुरली नहीं सुना, लेकिन एग्जाम्पल बनना ये सबसे बड़ी सेवा है। सबको संतुष्टता का अनुभव कराना ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए मधुबन वालों से चाहे फॉरेनर्स चाहे भारत के भी आते हैं, और कहाँ भी देखो मधुबन वाले जाते हैं तो मधुबन

0: संतुष्ट करने का लक्ष्य रखकर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रतिज्ञा चाहते जैसे वाणी द्वारा ऐसे बने कहाँ से बने स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन, जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है ये बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने के स्थिति द्वारा इस वातावरण में रहते हुए ऐसा कोई बन सकता है तो आप उनको ये प्रतिज्ञा में दिखाओ कि बन सकते क्या।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं है। इस जन्म का कनेक्शन तो बाप दादा यही चाहते हैं, इसी रखो, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो, अपना चार्ट बनाओ, हर समय बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई है बिन बिन, जानते हो ना ड्रिल शरीरी बनने की, अपने तीन स्वरूप स्मृति की ट्रिल जानते हो ना, जैसे बाप के तीन रूप हैं ऐसे आपके भी तीन रूप, इसलिए महामंत्र क्या है, मन मना भव।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: नहीं समझती है कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, सेवा ज्यादा चाहिए।

उतनी फ्री रहती है। तो व्यर्थ बहुत चलता है, इसीलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, ये साधन अच्छा है। देख जो सेवा आपको हलचल मिलाए, मानो चांस नहीं मिला है सेवा, और मन सेवा कर तो अच्छा ही है। लेकिन ड्रामा अनुसार या सर्कमस्टेंस अनुसार नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, तो वो सेवा क्या? उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? ऐसी सेवा का सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी के दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होगी। और अगर सेवा में

महान स्वरूप हो, सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, कई साधन ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा। ब्राह्मण ही बहुत आगे रखेंगे, पूछेंगे ये सब भाव स्वार्थी सेवा के लिए। जो सच्चा सेवादारी है आजकल के हिसाब से शुरू की स्थापना के बाद दूसरी थी, लेकिन इस समय के प्रत्यक्षता के हिसाब से सेवा आपके पास आएगी, आप सेवा के बिचारी नहीं, आपके पास सेवा

आपका ऐसी सेवा धरी जो स्वार्थ भाव नहीं हो। मुझे चांस मिले, मेरे को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता? मिलना चाहिए। ये ऐसी संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाए। सुख क्या

स्वार्थ नहीं, कल्याण का स्वार्थ। अगर मानो आपको जान से और दूसरा समझते

0: 是比阿哥先怎么用个三家台湾本来呢都会杀不给他比什么去了那是要让别人那一家能提高我给他的不知道吗包子送着没杀不给他干不啦把不过过去搞那你把他压倒
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah. शक्ति देंगे, गुण देंगे, वो कितनी दुआएं देंगे, और दुआएं लेना सबसे सहज साधन आगे बढ़ने का। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं, कर सकते हो तो करो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं, सफल करो। खजानों को सुनाया ना, मन सास से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, और बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना। सफल करो तो सफल करने से सफलता मोरत बनी जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती, सीढ़ी का नहीं। समस्या आई मिटाया, कभी दो दिन लगाया, कभी दो घंटा लगाया, सीढ़ी चढ़ना है। दुआएं सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो लिफ्ट में सेकंड में पहुंच जाएंगे जहां जाओ, चाहे सुखी वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज में पहुंचो, सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट का, बाप दादा तो कहते 1 सेकंड, 1 सेकंड में दुआओं के लिफ्ट में चढ़ जाओ। सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये मिलन विचित्र है, सब रिस्पांस में है।

Marcitore. Voto. Abbiamo.

सभी बच्चों को।

Şeyin mıhısı harbaca kaderedi. Va ba ba ba mira ba.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले खजाने के 3 खाते जमा करो ये पहले बताए, तो रिजल्ट
2: सदा डर से

0: Freddy. A baby. Dikhai denge. Sabke sansar sanskar. Abhi sampan nahi hue. मास्टर सर्वशक्तिवान कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है, मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुमार भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं और कुमारों के बिना से

0: charles patao komaro ke pena center charles hota hai nahi charles komar ke fishista ek bahut achhi hai komar jo dhrat sankalp kare प्रैक्टिकल में ला सकता क्योंकि सुकुमार उल्टा तो करेंगे नहीं सुलटा ही करेंगे तो कुमारों में दृढ़ संकल्प की गिफ्ट है चाहती है वो कर सकती है ये गिफ्ट है बाकी जो उसका नाम के हाथ में है लेकिन कुमार गवर्नमेंट भी चाहती है कि कुमारों का कुमार नहीं अभी बाप दादा की ये इशारा प्रैक्टिकल में नहीं लाया सारे विश्व के कुमारों का ग्रुप मधुबन में इकट्ठा हो और प्राइम मिनिस्टर यहाँ आवे कुमार अपना जलवा दिखा सकते कुमारों का ऐसा ग्रुप साथ ले जाओ कोई कहाँ का और डायरेक्ट निमंत्रण देवे सब देशों के और निमंत्रण देवे डेट फिक्स करे कुमारों में तो बाप दादा की बहुत शुभ उम्मीदें हैं और पूरन होनी है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सोने समय अपने पति को बाप दादा को पोता मिल पर गए

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

fishes. Umbrella.

的夜晚，Never ski gift. Set your thing. Like an amrat velika jevarda.ठीक है।

con la garantía. Escucha.

taken. विशेष कार्य में लगन चेक

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: साथ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, पार्थक्यता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता।

0: सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो, सर्व खजाने जमा कितने की, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो, एक मिनट में कितने संकल्प चलते हैं, फास्ट गति है ना संकल्प की, कितने सफल हुए, कितने समृद्ध रहे, कितने साधारण रहे। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प हर सेकंड हर श्वास जो पीते वो वाव वाव नहीं हो वाव, अभी कोई समय वाव होता है, कोई समय वा की बजाय वाई हो जाता है। कोई समय बिंदी लगाती है, कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बिजनेस वाले हाथ उठाओ, ये सब बिजनेस है। नीचे करो, नीचे। तो बिजनेस वाले क्या सोचते हैं? चांस मिला है, बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराऊं। श्रम खुद किया वो तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेस मैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है क्या होगा। तो उन्हों को चिंता से हटाए, अपना शीख खजाने तो सुनाओ। जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपने हम एजेंट्स कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं, उन्हों को चिंता है क्या होगा, कैसे होगा, है चिंता? हाँ, नहीं है तो हाथ उठाओ। अच्छा, नहीं है चिंता, कल कुछ हो जाए तो आप ऐसी बेफिक्र हो, बेफिक्र होके तोड़ने वाला भी बच जाएगा और फिक्र

0: बच्चे की मदद मांगी। आधा शब्द नहीं पकड़ू, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी, दिल शिकस्त ना होकर हिम्मत रखते चलो, तो मदद गुप्त मिलती रहेगी। तो बोलो कौन हो, बिजनेसमैन सभी बोलो कौन हो, कौन हो, बेफिक्र बच जाओ, हाँ बोलो, हाँ बेफिक्र बच जाओ, ये याद रखना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मानस से, शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके चरचित्र क्या देते हैं, दुआ देते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं ना, दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांग। जन्म में भी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब भी बाप को टाइम मिलता है तो क्या दिल में होता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, अब बच्चों को टाइम मिलता तो मेरा बाबा ऐसे है ना, ऐसे है, हाथ उठाओ। अच्छा, बोलने की चीज ही नहीं है, कितना भी बोलने की कोशिश करो लेकिन बोलते हुए बोल नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाइए ना, बाप दादा खुश है। लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और चाहिए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सके। अभी कर ली सो कर ली, उस समय फ्रिश्ता लाइफ या अशरीरी बनने का सेकंड में बिंदु लगाने का यही काम में आना और अचानक होना, इसका अभ्यास अगर सेवा भी की लेकिन इसका अभ्यास कम होगा। सेवा में ही लगे रहे, सेवा में लगना है लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारा दे रहा कि अचानक होना है और ऐसी सरकमस्टेंस में होना है, इसीलिए बाप को लेना कोई नहीं दे कि आपने बताया नहीं। बार बार बिना बिना इशारे दे रहे, सेवा का फल मिलता है, सेवा की मार्क्स, क्योंकि चार सब्जेक्ट है ना, तो सेवा की सब्जेक्ट की मार्क्स मिलेंगी लेकिन और तीन सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट में आपने मार्क्स ले ली और तीन में कम ली तो नंबर क्या मिलेगा। चार ही में फर्स्ट नंबर आना चाहिए, ये बाप दादा की हर बच्चों के प्रति शुभ आशय।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत उमंग उत्साह
2: ले गया।

सभी की भ्रमण जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना है।

0: लो, फिर टाइम देने की आवश्यकता ही नहीं रहे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sarvashak.

कैसे करूं, क्या करूं, नहीं।

चाहिए।

Mischief.

सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो, हक रखते हो बाप के ऊपर, लेकिन रूप चेंज।

ще води. Не ще.

जन्म

Oh,

0: Zor sangal lamba emerge nahi karo.
1: अनेक कलप का जन्म सिद्धांत कार है।

is at the God's saying. Yeah.

7. Ei. Sim.

0: Σάρακο.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ। क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ा, कर लिया। लेकिन चैन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना, पाप को भी बहुत री जाती है, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें, बाबा आप तो रहम दिलो ना, आप तो किमिया की सागर हो ना, बाप को भी याद कराती है, तो आप कौन हो? आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो। सुस्ता से सुना के कदम एक अखियर पका करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिजाते बहुत है, आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं, आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़े चतुराई करते हैं। आप ही चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है के नहीं करना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: वापस तो नहीं आई।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी जयते हैं, अज्ञानी भी जयते हैं कि अब कुछ और।

Y aquí es que para amar.

0: दृढ़ संकल्प के कारण, तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता? ये तो एग्जाम्पल है आपके आगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Retreat.

अस्ता

0: vuoi fare in arsco? Passa nena, passa nena. Fice male a me, lana, pap caca me, leggen ab caca me, fice male.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय सबका रजिस्टर देखते हैं ना, उसको बचाना अर्थात समापति का समय समीप लाना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए उन आत्माओं की विशेष ग्रुप ग्रुप में हर सेक्टर वाले बुलाकर उनका फाउंडेशन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जहाँ एक विकार होता है ना,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: शॉट इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा, चाहे सोन नाम अलग अलग है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और चार चांद लगाओ। ये बाप दादा को अचल, तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, बढ़ाएंगे ना, सभी ने उठाया, हम सब एक है। ये तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके, इसके कारण सोन बने, बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक ही रहेंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समस्या नीचे रह जाएंगी।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: और हीरो

0: receive anything. Feel it sink all up me. Submerging. May not make any body. Hurt some Sangam yuk. Jo moj ka yuk hai. Usi moj mein rahenge.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी निश्चयों पर बात नहीं समझना अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन
0: रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प, सारे दिन में बीच बीच में चलता है, वेस्ट ऐसा।

0: san man tu nei mo cita ta banna shiva shakti pano sena Espero que tata tata cabile tata yota apane frente or triste
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। सो सदा अच्छा होता है। मेरा स्वभाव, इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे वो याद करो, मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रही है कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। और शरद के प्रालंबित का अनुभव अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषारत की तीवर पुरुषारति सदा मास्टर दाता होंगे, लेवता नहीं, देवता देने वाला ये हो तो मेरा पुरुषारत it।

0: 就是个人，都是你的想念，你玩不下的气，是的，你的妈呢？感谢。
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

और आप सोचो ब्रह्मांड आत्माओं की निजी संस्कार कौन से है, क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति शांति ये है ना, तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट के संस्कार बनाओ, मेरा निजी संस्कार कौन सा है ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराय माल को अपना बना लिया, पाप के खजाने को अपना बनाओ, रावण की चीज को संभाल के रखा है और पाप की चीज को गुम कर देते हो क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है, ये पाप अच्छा लगता है, कहेंगे तो सभी पाप अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय के स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होती है और फिर भी कहता रहता है बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा है। आप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे

बाप कहती है कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है, जब बाप कहा मेरा बाबा दिल से अगर एक बार भी बोल दिया फिर भले बीच बीच में भूल जाता।

0: ले तो जाना ही है, सब बाप चाहते हैं कि बराती बन के नहीं चलना, सजने बन के चलना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 100, 2001 में होगा, 5 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवरेडी नहीं भी बनो, लेकिन इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं एवरेडी को। लेकिन सोचो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत
2: से रुका।
1: अभी अपन ने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, सब चाहे मधुबन निवासी चाहे विदेश निवासी चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Let's go.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा

Someone, someone.

कोई मांगे नहीं मांगे।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए अच्छे। बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन अब समय पर मान कोर्स के बजाय फोर्स का कोर्स करो। ऐसा फोर्स का कोर्स कराओ जो वो आत्माएं बाप के सिर्फ सनेही सहयोगी नहीं बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली फोर्स, सर्व फोर्स पढ़ने वाली आत्मा बने, समीप का रतन बने। ये हो सकता है अभी फोर्स का कोर्स करें।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा भी देख रहे थे कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना क्या समय की पुकार है। अपने लिए सोचो,

Bir hatta ki festival o.

0: Young in March. What is this now? Quite the night. कभी नहीं होगा। तो निरंतर सेवादारी नहीं बन सकेंगे। बिजी हो गया ना दिल या दिमाग। जब बिजी हो गया किसी भी बातों में तो सेवा क्या करेंगे। फिर जैसे लौकिक में 8 घंटा वर्क करती है कोई, 10 घंटा वर्क करती है, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे की सेवादारी, 6 घंटे की सेवादारी, निरंतर सेवादारी नहीं बन सके। चाहे मन से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड
1: माला पहनने वाले इष्ट कौन से इष्ट? आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी खुश राजी और कदम आगे बढ़ाने वाले फरक है, लेकिन मिलन तो होते बाप दादा भी बच्चों को देख इतना खुश होते बहुत खुश होते एक एक बच्चे चाहे नंबर वार हो लेकिन

Bye-bye.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी सेकंड में सभी मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माओं इस स्मृति के स्विच को ऑन करूं और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में अचल नहीं हो, अचल

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अब दादा सभी बच्चों से यही चाहते समान बनने का दिखाओ, सदा संकल्प में समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्त समृद्ध बनने नहीं देंगे और जब तक निमित्त बने हुए बच्चे सदा समृद्ध नहीं बने तो विश्व की आत्माओं को समृद्धि कैसे दिलाएं? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों के भिखारी बन चुके, ऐसे भिखारी आत्माओं को ये समृद्ध आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो बच्चे।

0: sono.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जमा होता है साधारण हो जाती। उसमें बहुत कम क्षमा करता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जाओ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बाप दादा समझते हैं आज के इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता, कर्म में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता है। चार को नहीं देख,

0: परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तुझे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदले करे, बदले करे, नहीं करे तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है। मंसूर है, बताए बताए। अच्छा, बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहते हैं स्व परिवर्तन लिए इस हद तक के मैं पन से मरना पड़े, मैं पन से मरना, शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैं पन से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, ये मैं पन से मरना है। तो मरना भी पड़े तो ये मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है, ये मरना नहीं है। 21 जन्म राज भाग्य में जीना है। तो मंसूर है, मंसूर है टीचर्स,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अनुभूति वो करा सकेंगे जो और व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन और व्यर्थ समय
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। एक जमा हुए खजाने में भी

0: अच्छा करा नहार से करा रहा है। ये है बेद की सेवा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

say.

0: Let's see.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Thank you.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: योग में अमृत वेले ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग अशांति हलचल बढ़नी है। इसलिए अपने Peace.

आप एक रखिए एक परिवार, उसके परमान जब एक परिवार चली देंगे, इसलिए बाप दादा अगले वर्ष जो आया कि आया

0: अटेंशन खिंचवा रही है। कि अभी ज्वालामुखी योग की आवश्यक
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, अब माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन कोई का खेल होता है ना, देखा है क्या? देखा है यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं, तो सब समझो कि ये कुश्ती का खेल रहे हैं। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साखी होगा, खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं, कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ कैसे होगा, क्या होगा, क्या पाठ पर है, जो होगा वो अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। बातें ऐसे होती हैं काल में नहीं होगी, लेकिन ज्ञान के बाद होगी। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ, अज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, ज्ञान छोड़ते हैं, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए समझो, तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियां के अनुभवी सहन शक्ति, न्यारपन, नष्ट हुआ, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है के लिए आप सीख लो। तो ये परिस्थिति, ये तो पाठ पढ़ाने आई है, घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये कपड़ा तो है, मारो अच्छी तरह से। घबराने पहले से ट्रस्टी है, सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब पाप के हवाले कर दिया, मेरा क्या होगा, बस घर का आता है ना तो घर बढ़ो। इसको कहा जाता है संप्रत स्वरूप।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सेवा तो करी, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी बच्चों का फोटो निकालेगा

खुशी को जाने ही नहीं देना। खुश रहे।

चित्रा।

0: ஏசிக்கிறேன்.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सोच के कहो नहीं। सब चलता है। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दे दो। दिया डायरेक्शन, अपने संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दी मुख से ने। ऐसे Yep। सब मेरा पन, ये प्रभु प्रसाद है मेरा नहीं, प्रसाद को मेरा मानना, ये देवान अपमान, ये अपमान छोड़ना ही संपन्न बनना, इसीलिए जो वर्णन करते हो
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्रह्मा बाप को देखा कर्म करते, कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान, न्यारे और प्यारे, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी, होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, इसी को ही जीवन मुक्ति स्थिति कहा जाता। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते, कमल आसन धारी दिखाते। तो आप सभी बच्चों को भी संगम परी जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: से मिलने तक पहुंचे आगे।

0: कभी भी कुछ भी होवे, कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम की तो दुनिया ही है, तो फौरन अपने टीचर द्वारा उसका हाल करा देगा। दो दिन हो गया है, ऐसा है, ये नहीं करना, क्योंकि बहुत पीछे आए हो ना, और जाना तो आगे चाहते हो ना, पीछे रहना चाहते हो, आगे जाने चाहते, जाने का यही एक बात करना, दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना। इसके लिए अपना से मिलने के बाद एक तो अमृत वेला जरूर करना, और उसके बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या, जिसमें मन बिजी रहे, कोई ना कोई ड्रिल, अनेक ड्रिल बाप दादा ने सुनाई है, लेकिन कोई ना कोई ड्रिल साथ साथ करते रहना, कि नहीं जो भी आई है, खुश रहो, आबाद रहो, आगे से
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वर्तमान समय और

Psst.

Fuck.

स्वभाव, संस्कार और इस

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे सोचते हैं कि बाप दादा क्या चाहते
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हाथ उठाने में तो होशियार नहीं, बाप दादा खुश है, खुश है। हिम्मत तो रखी ना, तो हिम्मत है बच्चे, मदद है खुदा। बाप दादा खुश होते हैं, कोई कोई बच्चा अभी भी देख से कम जो रेगुलर आने वाले है उनों को दीवार पुरुषार्थ का लक्ष्य है, ऐसे नहीं है, नहीं की बातें सोचते हैं, लेकिन करने में थोड़े ढीले।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

अभी के समय पर मां

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

ich sonst sehe. हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क्स तो होने चाहिए, नंबर थोड़ा सा पीछे है वो बात अलग है, लेकिन अटेंशन परिवर्तन भी है, ये चीज करो, अलबेलापन तो नहीं आता, हो जाएंगे, ये क्या बड़ी बात है, इसको कह

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जय छोटे।

छोटी छोटी एरिया वाले भी आपको लेना दे सकते। हमारा बाप आया, आपको मालूम पड़ा हमारा बाप है जो सब किसी को भी बेच के कम से कम पता तो पड़े कि हम सब का बाप आया है। अचानक आना है, पता के नहीं आएगा। अपना चारों ओर संदेश देने का कर्तव्य अवश्य देखो। Baby.
vivendo. Dijeron, Olena, Neireye, Avgoto, Patay, Neibara. ¿Quién quiere aquí tornas, dijo, Gana? Yo, Achanak, Cochupi. Right.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पर ही चीज को अपना बना के रखा है ना, कोई पराई चीज को अपने पास संभाल के रखे, छिपा के रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखुर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समापति समारोह करेंगे, करेंगे, करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो, जहां मन होगा ना वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरी की चीज है, वो नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना, आपकी भ्रमण नेचर है या पुरानी नेचर है?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sofía Fígaro.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सदा कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है, आपके पास परमात्मा विल पावर। परमात्मा ने विल की है पावर्स की, विल पावर। तो परमात्मा विल पावर के आगे ऐसा।

0: भी कोई कार्य अर्थ सामने नहीं जाओ। क्यों, क्या ऐसा वैसा, ये पहले आपस में सोच के फाइनल करो, वो बात अलग है। लेकिन जब सामने जाते हो तो सदा दृढ़ संकल्प से जाओ, होना ही है। आकर तो सभी कुछ को नहीं, आप इस सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुके।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Я про фото.

Choc.

0: Sister. Up.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो आज

し。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

से चारों ओर के परिस्थितियों के बीच में

0: cosa, Teo. Easy practice. Soy a me.
1: मन बुद्धि को

ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूं। इस मास्टर शक्ति

0: say practice. Sare din mein jab bhi samay mile baar baar man ko ekagar karke dekho jahan chao jo chao मन एकाग्र पुरुषार्थ एक मिनट लगे एक सेकंड में फुल स्टॉप क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है इसलिए माइंड कंट्रोल मेरा मन है मैं मन नहीं मेरा मन है तो मेरे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

लगा देगा।

أصرف في جيبنا. तो क्या संकल्प है? विजय पर नहीं है ना कि सिर्फ 108 विजय पर नहीं है, बाप का हर बच्चा विजय बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? विजय का तिलक, क्योंकि साधारण रूप में बाप को पहचान चाहे लास्ट बच्चे पुरुषार्थ बेटी लाए, लेकिन उसमें भी ये विशेषता है कि साधारण रूप में आए हुए बाप को जान मेरा बाबा तो

0: chico. Himmat rakh. Vijay. Praapt kar rahe.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सिक्किया बहुत नहीं दो कि मैं करूं, सिक्किया देने में एक दो को भी समोचार, लेकिन कि मैं के साथ सिक्किया दो मोरली सुनाने कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो वो वाले सिक्किया दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो किम्या के साथ सिक्किया दो, सिर्फ सिक्किया नहीं दो, रहम दिल बन के सिक्किया दो तो आपका रहम ऐसा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चों का

परिवर्तन का कार्य। नहीं करना है बच्चों के साथ साथ करना, ये अलौकिक साथ रहने का प्यार। जन्म भी साथ है, और रहते भी कहाँ हो, अकेले या साथ में, हर एक बच्चा

0: Chocate.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ışık diyor duvara. Sakaçtı. Cesiz.

सो खुशी।

se vacó.

Erdbeben, Banzer. Seva. जैसे वाचा सेवा का विस्तार किए वैसे मनसा

левая черта. Jordi.